0: You were listening to devotional songs rendered by Sri Vaidyanathan on the 14th of August 2006 during the Ati Rudra Mahayagnam at Prashantanilayam.
1: You are tuned to Radio Sai Global Harmony, bringing you 24 hours a day the message of love of Bhagavan Sri Satya Sai Baba.
2: We now bring you a recital from the Sikh scripture, the Guru Granth Sahib.
3: Tanasari Mahalla Jautha Har Har Bund Pai Har Swami Ham Chatrik Bilal Bilati Har Har Kirpa Karo Prabhu Apni Mukh Devo Har Nimkhati हार बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ तुम हर सर्वर अत अगाह हम लह ना सके अंत माती तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू ले राती हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा हर जपयो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की दिन यर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आपे आपा की जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दसन दाद दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद उर तार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पय हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शेख हट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम ते आई हर दरगे पावे फिर जन्म ना आवे हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम ओर तारी नानक हर पय है सिखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवे दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपयो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुत तीस कोट मुन जनो सब चाहे हर जियो तेरो नाहो गुर प्रसाद को बिरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जसि उत्तम काम जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हौं तिन कै सद बलिहार जाऊं रहाओ शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हौं पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तनका हर थाएं पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत करमानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तहे उपादगत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा

सहा सब तुझी महेश माहे सबना की तू आस है मेरे प्यारे सब तुझे ते आवे मेरे सहा ज्यो पावे त्यो रख तू मेरे प्यारे सच नानक के पातशाह तनासरी महला पंजवां कर पहला चौपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी भगत वच्छल निरंकारे कोट ब्राद मिटे खिन पीतर जां गुरमुख नाम सुमारे मेरा मन लागा है राम प्यारे दीन दयाल करी प्रभ कृपा वसकीने पंच दूतारे रहाओ तेरा थान सुहावा रूप सुहावा तेरे भगत सुहै दरबारे सर्व जिया के दाते स्वामी कर कृपा लिहो उबारे तेरा वर्ण ना जापै रूप ना लखिया तेरी कुदरत कौन बिचारे जल थल महियल रव्या सर्ब ठाई अगम रूप गिरधारे कीर्त करै सगल जन तेरी तू अविनाशी पुरख मुरारे ज्यो भावै त्यों राखो स्वामी जन नानक शरण दुआरे तनासरी महला पंजवा बिन जल प्राण तजे है मीना जिन जल सो हेत बढ़ायो कमल हेत बिन सो है पवरा उन मार्ग निकस ना पायो अब मान एक स्यो मोह कीना मरे न जावे सदी संगे सतगुर सबदी चीना रहाओ काम हेत कुंचर लै फांक्यो ओ परवस भयो बिचारा नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा देख कुटांब लोभ मोहयो प्राणी माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना उण छोड़ सरा पर जाना बिन गोबिंद अवर संग नेहा ओ जानो सदा दुहेला कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला तनासरी महला पंजवा कर कृपा दियो मोहे नामा बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा गुर की चरणी लाए साध संग चिंत बिरानी छाडी आ बुद्ध मोह मन बासनो दे कर गढ़ा गाडी रहाओ ना को मेरा दुश्मन रया ना हम किसके बैराई ब्रह्म पसार पसारियो पीतर सदगुर ते सोजी पाई सब को मीत हम आपन कीना हम सबना के साजन दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राजन बिन सो टीठा अमृत बूठा शब्द लगो गुर मीठा जल थल महियल सर्व निवासी नानकर मैया डीठा तनासरी महला पंजवा जब ते दर्शन पेटे साधु भले दिन ओए आए महा आनंद सदा कर कीर्तन पुरख विदाता पाए अब मोहे राम जसो मन गायो भयो प्रगास सदा सुख मन मैं सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान।

हमें रोग मिटे कृपा ते जमते पे विवका। गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी। कहो नानक जिन जमते काढे तिस गुर कै कुर्बानी। तनाश्री महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनिया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी। जी की एक ही पहमानी अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगे न डोले दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक बखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनाश्री महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी। बिखिया मह किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रप बिनहर कहां अगाई। रहा हो दिन दिन कर

कामवंत कामी बहुनारी परग्रह जोहन चुकै दिन प्रत करै करै पछतापै सोग लो मैं सूकै हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहजया आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवै न लागन कहो है कछुवै जां को फिर एहो तावै जां को गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बनयावै जां को आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चितना बसाओ रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आय चिंता जाको दया करी मेरे ठाकर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्व जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग्रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा

हरचन दौरी बनहर पात्रे एह तुहारो बीत रहाओ। चंदन लेप होत देह कौ सुख गर्दप भस्म संगीत, अमृत संग नाहे रुच आवत बखैठ गौरी प्रीत। उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत, जात अकारथ जन्म पदार्थ काज बाद रह जीत। जन्म जन्म के किलविख दुख भागे गुर ज्ञान अंजन नेत्र दीत। साध संग इन दुखते निकसियो नानक एक प्रीत। तनाश्री महला पंजवा पानी पखा पीसो संत आगै, गुण गोविंद जस गाई सास सास मन नाम समारै, विश्राम निद पाई।

वेद सिमरत कथा शास्त्र भगत करै विचार मुक्त पाई साध संगत बिनस जाए अंधार चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक तान मान दी बाण साचा नानक की प्रवटेक। तनासरी महला पंजवा फिरत फिरत पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया आन सगल बिद क्याम नया वै हर हर नाम ते आया ताते मोहे तारी ओट गोपाल शरण परे ओ पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल रहाओ स्वर्ग मृत पयाल भू मंडल सगल ब्यापे माए जी उदारण सब कुल तारण हर हर नाम ते आए नानक नाम निरंजन गाइए पाइए सर्म निधाना कर कृपा जे दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा कर दूजा चौपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल कामना आवे से जंजाल संग न चले तिन सो हीत जो बैराई से ही मीत। ऐसे परम कोले संसारा जन पदार्थ खोए गवारा रहाओ साच धर्म नहीं पावे डीठा झूठ तो हो स्योर क्यों मीठा दात प्यारी विसरिया दा तारा जाने नाही मरण विचारा वस्त पर आई।

पत परमेसर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण सरण नानक दास हर हर संती एह बिद जाती तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर राखे संसार सागर में जल ना दीने किन ना दुख तर पाखे जिनके मन साचा विश्वास पेख पेख स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण शरण पूर्ण परमेश्वर अंतरजामी साखियो जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकर राखियो तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कतो न जाई रव रया सर्वत्र मैं मन सदा ते आई ईत उत नहीं बिछड़ै सो संगी गनिया बिन सजाए जो निमख मह सो अल्प सुख पनिया रहाओ प्रतपाल अप्याओ दे कशून ना होई सा सा संभालता मेरा प्रभ सोई अशल अशेद अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप कर आनंद जानो अचरज अनूप सामत देहो दयाल प्रभ जित तुमह अराधा नानक मंगै दान प्रभ रेन पग साधा तनासरी महला पंजवा जिन तुम भेजे तने बुलाए सुख सह सेती कर आओ आनंद मंगल गुण गाओ सह तुन निचल राज कमाओ तुम कर आवो मेरे मीत तुमरे दोखी हरे आप निवारे अबदा पई बतीत रहाओ प्रगट कीने प्रभ करने हारे नासन भाजन थाके कर मंगल वाजे नित वाजे अपने खसम निवाजे आसर रहो डोलो मत कब हूं गुर कै बचन आधार जय जयकार सगल भूमंडल मुखी उज्जल दरबार जिनके जीत नहीं फेरे आपे पया सहाई अचरज किया करने हारे नानक सच वड़ियाई तनासरी महला पंजवा कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुनो संत प्यारे बिनो हमारे जियो हर बिन मुक्त न काहूं जियो रहाओ मन निर्मल कर्म कर।

सो कहियत है सूरा आत्म जिणै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया।

जन की तुर देहो कृपा निध। नानक कह सुख एही तनाश्री महला पंजवा। जतन कर मान खुडह कावे ओह अंतर जामी जाने। पाप करे कर मुकर पावे पेख करे निर्बान। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर उत ताके उत ते उत पेख आवे लोभी फेर रहाओ। जब लग टुटे नाही मन परमा तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनाश्री महला पंजवा। नाम गुर दियो है अपने जाके मस्त कर्मा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे ताका जुग में तरमा। जन कौ नाम वडाई सोब नामो गत नामो पत जन की। माने जो जो हो ग्रहाओ। नाम तानो जिस जन के पल से ही पूरा सहा। नाम व्यवहारा नानक आधारा नाम प्राप्त लाहा। तनाश्री महला पंजवा। नेत्र पुनीत पे दर्श पेखे माथे परोर वाल। रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय बसो गोपाल। तुम तो रखनहार दयाल सुंदर सुगण बेअंत पिता प्रभ हो प्रभु कृपाल रहाओ। महा आनंद मंगल रूप तुमरे बचनन ऊपर साल। हृदय चरण शब्द सतगुर को नानक बांध्यो पाल। तनाश्री महला पंजवा। अपनी उकत खिलावै भोजन अपनी उकत खिलावै सर्व सुख भोग रस देवै मन ही नाल समावै। हमरे पिता गोपाल दयाल जो राख मह तारी बारक कहो तैसे ही प्रपाल रहाओ। मीत साजन सर्व गुण नायक सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनाश्री महला।

मंत्रण राम नाम हितकारे। सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पारो तारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे। जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवा छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन

रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत की वरदा जाय बिरथारी। जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवा सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना। शीतल तन मन छाती रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती।

मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का धाम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमरौ दिन रैन, नानक सत कुरबान।

संतन का संग पावा, सोग अगन में मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावा, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मदयंत प्रभ जापण, नानक रंग लगा परमेश्वर, बाहुड़ जन्म ना छापण। तनासरी महला पंजवा, मांगो राम ते सब थोक, मानख कहो जाचत शरम पाई है, प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ। कोखे मुनजन सिमरत पुराना, वेद पुकारै कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई है, दोवै सोहेले लोक। आन आचार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पह काटे, मिल साधु बिन से सोक। तनासरी महला पंजवा, तृष्णा

दास अपने को नाम देवो दृष्ट प्रवतारो कृपा करता रहो पूजा गय कूबते काढ़ लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद अनक दोखा तन शाद पूरे प्रभ बिना आन रख नहारा नाम सिमरावो शरण सूरे। पत त्यो धारणा जी जंत तारना बेद उचार नहीं अंत पायो गुणै सुख सागरा ब्रह्म रत्नागरा।

0: नाम गोबिंद का सदा लीजै, मिटै कमाणे पाप चराणे, साध संगत मिल मुआ जीजै रहाओ। राजोबन बिसरंत हर माया, महा दुख एहो महात कह, आस प्यास रमण हर कीर्तन, एहो पदार्थ भागवंत लहै। सरण समराथो अकाथ्या गोचरा, पत ते उदारण नाम तेरा, अंतर जामी नानक के स्वामी, सरबत पूर्ण ठाकुर मेरा।
1: You are listening to Radio Sai Global Harmony. Radio Sai brings to you every day the teachings and the universal message of love of Bhagwan Sri Satya Sai Baba.
2: Radio Sai presents next a selection of songs sung by devotees from the United States of America.

0: खासदार को चाहे तो ताज पहना दे, वो खासदार को चाहे
1: तो ताज पहना दे,
0: वर्ष भर में एक छुट्टी ला दे। जो भटकते हैं, जो भटकते हैं नहीं पाते रास्ता कोई, उन्हें एक इशारे दे, जरा गौर कीजिए, उन्हें एक इशारे दे, उन्हें
2: तो सुनिए ना।

0: मेरे घुटे हुए अरमानों को एक बरकत दी।
1: कौन है जिसने मुफलिसी मुझसे छिना कर मुझे आबाद किया।